0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो अमन अठासी अशारिया चार नेटवर्क।

अलावा पदी खबर आसान पुई कई जिसमें द कस्टमर लकी राम शुरू दा पहाड़ी उक्रीम की दनना कोपन मौजूद दे और पहाड़ी तेलो के हम चिकम दे अगा दनना कोपन मौजूद दे द कोपन चिकम दी पक्रीमो के कम तास्त मिलावेगी और पतीलो की द कोपन बतासु पकूर के जान सरा संभाल की दी कल चिमंग तास्तो हुआ द कोपन जमा कई नोव्या जमा कहू जी द चाप मख मानी तेर सरे दे बिलखसूस पदे तंदी बांधे पदे पूज बांधे पदे मख बानी तेर सरे दे या तो लड़ी तेर सरे सुरकई इनशाला गारंटी दर कोम चेतासु द हाई गोल्ड ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल हुई और ददी सरा यो फेस वॉश इस्तेमाल हुई द हाई कपने वाला माँ दतुवी चिमख की मुगड़वाली वी उदानी वी नो द कोयली वाला फेस वॉश पद हाई कपने इस्तेमाल हुई हाई गोल्ड एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश औ कपमख माने मुदानी ने हुई मख मुगड़वाले न कई नोब्या बद अनार और द लिंबू वाला फेस वॉश इस्तेमाल हुई नो पदी मा निशान पोई कही जी कस्तासु पमख तेर सरे दे पजिमवारी सरब तेर सरे खत्मीगी कस्तासु पमख मानी दागुन दी कतूर दागुन दी सर दागुन दी श्न दागुन दी खर दागुन दी उस्तासु दमख खाइस्ते वरकड़े दे पजिमवारी सरब इंशाल्लाह दा दागुन उरकीगी याद दिन अलावा कचर तक इस्तासु पमख चिकम दे अगर रंग तूर दे यानी तूर वाले दे दरकिया मख मोडेर खड़ वाले की बदरंग वाले की जी तासु दा हाई कॉस्मेटिक दक अपने हाई गोल्ड ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई मातासु तवीली दी चेतासु लकम क्रीम रिजल्ट दर कई अगर इस्तेमाल हुई जमुंग क्रीम बिल्कुल नहीं मैं इस्तेमाल हुई जमुंग क्रीम अगर खलक इस्तेमाल कई सूख चिवाई ची मा तो कपनी क्रीम रिजल्ट न रखी सूख चिवाई ची जो टूलू कपनो न खफे मा का लकान व्यू कुछ न कही हुई न तासु दहाई का स्मेरिक द कपनी क्रीम इस्तेमाल हुई पदी खबर बानिजान पुई कही जबार बार दा खबर को मजी मंग दा क्रीम दी मार्केट तर उड़लम ना पखुदे यकीन कहो मसाला दा वो खल को वेल चेहरा लाइपोजाइम डेर खदे जिनको पास डेर खदे क्रीम जोड़ कही बे मुंग क्रीम जोड़ कर मंग तासुला मेडिकेटेड सीजुन दर कहू जी जमुंग सुमरम सीजुन दी मंग तासुता टूल मेडिकेटेड दर कहू जी मतलब पदी की मंग द जर्मनी दवायाने इस्तेमाल हो गुरी जी दल तुमरम कंपनिया नहीं दीजिए सुमरम बेशमार कंपनिया नहीं दीजिए मुंग दे टूल कंपनिया ना अलग कार कहू जी जगह चिता सुमरम कंपनिया ने कम प्रोडक्ट तैयार हुई अरियो मालिक पल अखबारी की खसिस तैयार की और अरियो सड़ी बखसिस तैयार करे हुई हो चिता अलग कार न कही नुसपे हो चित्री मुतमईन नहीं न तो खुबे ना खिलेगा ना नुजता उसदावे माँ चे जमा द हाई कॉस्मेटिक द कपनी क्रीम और फेस वॉश अग खलक इस्तेमाल के अग खलक चे सूख डेर जरूरतमंदी चे सूख डेर खफद इखपल खाइस्ता चे सूख दा हुई चे जमा मख न खेस्त की जमा दमख दा गुन न उड़की जमा दमख दानी न उड़की न टूल पाखिर के जतास्तवें ब्याम जमा क्रीम में इस्तेमाल हुई चिकल तासर टूल इलारी बंदिशी टूल इलारी खत्म शी नोबिया तासु हाई कॉस्मेटिक द कंपनी जमंग हाई गोल्ड ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए इनशाला दा जमा ब्याम तासर वादा द पदी रेडियो बानी चे इनशाला जमा क्रीम बतासुल दस रिजल्ट दर कई दस रिजल्ट दर कई चे तासु व टूल उम्र की पदी करक की पदी बनु की पदी नवरंग लकी मरवा तो पोजिरिस्तान की दस क्रीम नहीं इस्तेमाल करी माद तब्याम वेला चे जमा क्रीम द लेजल नर दर निकी जमा द क्रीम न मुतमईन नश वाली स्तादी कसम हुई दुकानदार ले वापस वर का दस जिम्मा

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो खस्ती दी
1: जनाती से तार खाना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती दी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा पर उभरे
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुरता इश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला नफाशूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो वो दर तो ये या के पर इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

गवा दे डीर इलाज में भरला ओकड़ो डॉक्टर मेडिसन और प्रोडक्ट्स वगैरह मायूस कोल न की दो बस माल अच्छा मशवरा राका द इश्मा एंटी एक्नी ट्यूब द इश्मा सीरम और इश्मा राइस फेस वॉश टूल लजर हम मशवरावर कोम चितासु टपल टाइम मवेस्ट कवे द छा मखमानी दानीवी दा गुनेवी अगे द पारा इश्मा प्रोडक्ट यूज के इंशाल्लाह मखबम मुकम्मल।

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन। रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमात आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन आपके मन का।
1: 8:09 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: Τώρα είμαστε εμείς δίτα, ούγε γέζει από τα σαπάρσι, δε τάσα έχω χαστηρί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, ο χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα εμείς δί μόχο κορτά, νέσνελ ο μαλτι νέσνελ, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βαρίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Μπέλκολ τα ρεχανά, τα κίλε βε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Ο τσεκάλανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοράλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χουασούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो उदार इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी जी कपड़े सा पुशले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो हुई है दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মেলা বিজি।

0: हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: द आवाज दे द अमन। द आवाज दे द पाकिस्तान। द आवाज़ द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: हर जुड़ा आवाज रेडियो मन आवाज रेडियो मन 88.4 नेटवर्क मुंगरोस तासुल पारा दगशान मलमती परग्रमना चेतस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासु सरयो रेडियो मन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।